0: जब टेकन खेलना मैंने स्टार्ट की थी तब मैं कोई 7-8 साल का था और मेरे बिल्कुल घर के सामने हुआ करती थी शॉप गेम की। फ्रूट्स की दुकान थी ना, मतलब बाहर उसके फलों की दुकान थी और फलों की दुकान के अंदर जाके गेमें थी और गेमों में लाइन से कुछ 3-4 गेमें लगाई थी। पहले पे टेकन थी, फिर दूसरे में दूसरी मिशन गेम्स होती हैं जो बच्चे खेला करते हैं, इस तरह करके एक शॉप थी। तो अपने कज़न्स के साथ स्कूल से वापसी में जाया करता था गेम खेलने।
1: छोटा सा था तो वीडियो गेम में चले जाना, शुरू से इसको शौक था गेमिंग का ना।
0: लोग कहते थे कि अरसलान ना एक बच्चा आता है सबको हराता है, इस तरह करके थोड़ी एक इज्जत थी मेरी। वहाँ पे मुझे कोई नहीं हरा पाता था, मतलब वहाँ पे अगर 10 लोग आते थे रोज़ खेलने के लिए मेरी एज ग्रुप या मेरे से बड़े, तो मैं उनको ईजिली हरा लिया करता था। तो थोड़ा फेम मुझे मिलना स्टार्ट हो गया।
2: In the dim, smoky arcades, Arslan Ash began making a name for himself. But in Pakistan, gaming was still seen as a useless distraction, and arcades were thought of as bad places.
0: Even ki mujhe bahut maar bhi pada karti thi, mujhe abhi bhi yaad hai ki jo mere ek bhaiyon mein se ek bhai the, तो वो मुझे बहुत मारा करते थे। उनके एक दफ़ा तो आर्केड सेंटर के अंदर जाकर मुझे बहुत मार पड़ी और मैं भागने की कोशिश कर रहा था कि मैं चला जाऊँ कि मेरी बिस्ती हो रही है वहाँ पे, जो लोग मुझे इज्जत करते थे वो कल को मैं अगर गया तो मेरी बिस्ती कहेंगे वो, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाके मारा। तो उसके बाद मुझे एक दो दिन मैं गया भी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, फिर मैं फिर बेशरम था, मैं जाना भी था, मैं चला, लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन फिर दोबारा 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ, मार पड़ी बहुत ज़्यादा अब्बू से भाइयों से। तो
1: मैं जाके ले आती थी, वो रहती थी मैं कि उसको मारी ना पड़ जाए, तो मैं ना इसके पापा के यहाँ से पहले पहले इसको घर ले आओ।
3: अरसलान ने भी काफ़ी मतलब कि मार खाई है सबने। मुझे जब घर से निकाल देते थे तो मैं अरसलान की तरफ आता था,
4: हम छुप छुप के खेलते थे, हमें मार भी पड़ी है काफ़ी। हमने एक दूसरे से मिलना है, गेमिंग में जाना है, तो छुप छुप के जाते थे कि तुम्हारे घर वालों ने कहा है हमारे बच्चे से ना मिले, ये उसे गेमिंग में लेके जाते हैं।
3: निकाल देते थे हमें घर वाले, उनके पास आखिरी हल यही होता था कि इनको निकाल दें, तो हम खुश हो जाते थे, ठीक है निकाल दिया अब सारा दिन गेम खेलेंगे।
0: आई थिंक उनको गेमिंग पसंद नहीं थी क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था वहाँ पर। वहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि वहाँ पर लोग अच्छे नहीं आया करते थे, बहुत बुरे लोग आया करते थे। अब तो ऐसे ही नहीं है, अब तो अच्छे बन चुके हैं क्लब्स, लेकिन तब लोग बहुत बुरे होते थे वहाँ।
2: Arsalan's obsession with gaming was hard for his family to accept. For many Pakistani parents, gaming as a career was unimaginable, and the pressure to follow a traditional path was heavy on him. But Arsalan held on to his dream, proving that with passion and hard work, even the wildest dreams can come true.
5: Unbelievable! Absolutely unbelievable!
6: Arsalan Ash is the real deal. That dude is the real deal.

0: यार टूर्नामेंट का सीन है कि सबसे जो पहली स्टेज है वो है कि आपने अपना ग्रुप पिक करना है आपका। मैं लास्ट 2 बार गया हूँ तो 4 ग्रुप होते हैं ए बी सी डी, तो मैं हमेशा ए में आ गया हूँ। मतलब ए
1: अच्छा
0: बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत अंत की है मेरे लिए, तो मैं बी सी डी में से कुछ रख करूँगा। ए में लग सकता है ईजी भी हुआ मेरे लिए, बहुत ईजी भी हुआ, फिर भी ए में नहीं जाना। पहला तो मैंने इसलिए चला गया, मैं ए फॉर इस्लाम ए में, तो नी पीछे से आ गया कितना इस्लाम भी उलसान भी आ गया। मतलब सारे टॉप के प्लेयर मेरे ही ग्रुप में आ गए इस साल, मैंने कहा नहीं। मैंने फिर लास्ट टाइम वो लकी ड्रा हुआ था, लकी ड्रा में मेरा ए आ गया। एग्जाम मेरी फर्स्ट रैंकिंग है, तो अब मैं खुद चेक कर सकता हूँ कि मैं किस ग्रुप में जाना चाहता हूँ।
2: Arslan Ash's journey was born from hardship. At a young age, he suffered the heartbreaking loss of his father, leaving his mother to raise him and his siblings alone.
3: इसके पापा तो रेलवे में थे, पेंशन ही आनी, उसमें क्या होता है कुछ। मैंने भी घर में मेहनत करनी, सिलाई वगैरह करती थी।
4: तो मैं तो नहीं कमाता था, मैं तो था भी 12 साल का, और हम क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो तब वसाइल भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था घर में भी।
2: But from this struggle came an unexpected blessing. The dim glow of arcade screens became his escape. And in the game's pixels, he found a world where he was in control.
4: तो मेरे लिए हुआ कि मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता खुल गया कि मैं ज़्यादा गेम खेलने लग पड़ा, ज़्यादा बाहर जाने लग पड़ा, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ा। रात को टेंशन होती थी, हाँ 5 मिनट के लिए जाना है तो 5 मिनट के लिए, पहले 5 मिनट बाद ही घर आना, अब तो 5 मिनट के लिए घंटे बाद ही घर आना, तो मसला नहीं है।
3: पहले इसके पापा तो इधर दूर नहीं जाता था, ज़्यादा करीब करीब ही रहना, इससे मैंने जाके लिया था, तो बस फिर बच्चे सवाल हो जाते कहते कि अब कौन रोकने वाला, तो चुप करके निकल जाना। ये फिर इसकी त्वचा ही बहुत थी कि मैंने ये भी खेलनी है, मम्मा जो मर्जी कर लें, तो मैंने ये नहीं छोड़ी।
4: उस दिन उनको बहुत दुख हुआ था जिस दिन मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं है, और एक बंदा आप पे सारा कुछ लगा रहा है, सारा रात सलाइयाँ करके सब कुछ करके कि बंदा पढ़ ले और कुछ बन जाए अपनी लाइफ के अंदर।
3: मैंने कहा कल मामा मैंने ये करना, मैं कहा पढ़ लो तुम अच्छी तरह पढ़ लो, कुछ बन जाओ।
4: तब मैं दिल दिल में सोचा था कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा इंशाल्लाह, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं प्राउड फील कराऊँगा मम्मा को। लेकिन वो कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है, मैं किस तरह यकीन, मतलब आप तसल्ली दे सकते हो लेकिन जब तक आप करो ना तो यकीन नहीं आता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने रिस्क लेना लाइफ के अंदर, मैंने फिर बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, मैं कहा मुझे एक बार मौका दें आप, अगर मैं नहीं कर सका तो मैं जो कहोगी ज़िंदगी के अंदर वही करूँगा, अगर मैं नहीं जीत सका तो जैसे जैसे कहोगी वैसे ही करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा इसके अलावा, मुझे बस एक मौका ज़िंदगी में चाहिए अपने लिए।
2: The arcades became his safe place, turning his pain into strength, sharpening his skills against endless challenges.

0: I think there's a lot of pressure on them to do so, and it depends if they're going to be able to get past that pressure.
1: 마지막 그런 뭐 최강자 뭐 그런 타이틀을 얻고 싶은 게 아닌가 싶어요. 그래서 올해에서 우승을 하게 된다면 굉장히 좀 철권 세븐을 굉장히 깔끔하게 종료하고 철권 8로 넘어갈 수 있는.
2: वो लास्ट है मेरी तरह वो भी लास्ट हम खेल रहे हैं और उसमें बहुत वो है कि ना मैं जीतना जिस तरह मेरे अंदर बहुत पावर इस वक्त एनर्जी है कि मैं जीतना आई थिंक वो हर चीज करेगा जीतने के लिए इस दफा
0: ही वांट्स टू बी वर्ल्ड चैंपियन एंड इफ ही वांट्स टू बी वर्ल्ड चैंपियन टेकन 7 दिस वीकेंड इज लास्ट शो
1: 그럼 뭐 최강자 뭐 그런 타이틀을 얻고 싶은 게 아닌가 싶어요 그래서
0: I believe he can do it for sure but we'll have to see
2: जिस तरह की मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे यकीन है अपने आप के मैं जीत जाऊंगा इस साल का टेकन वर्ल्ड टूर

0: day one of the Tekken World Tour Finals 2023. And what better place than the legendary Civic Theater? This historic venue sets the stage for an unforgettable showdown, where only one will emerge as the new champion.
1: First Tekken World Tour Finals on American soil. It is about to be amazing, and I hope you guys are ready for some good-ass Tekken. And if you've ever watched the TWT Finals, you know historically the LCQ is where the fire starts.
2: The C word to me is violence. This is, we are about to witness some beautiful chaos, you know what I'm saying?
0: As the last chance qualifiers begin, Arslan Ash steps in, still feeling the sting of last night's defeat. The last chance qualifiers offer players one final chance to grab the two remaining spots in the Tekken World Tour Finals. With top global and regional players already locked in, this is the last opportunity for competitors to fight for Tekken glory. Who will rise to the occasion? The crowd's energy is electric. Every match ignites excitement.
3: KO.
4: We always say it's a bloodbath, but this time, this is the last one ever for Tekken 7.
3: Oh, yeah.
4: There are so many killers.
0: In a surprising turn, Joe Crush, the opponent from the night before, wins the final match of the LCQ.
5: But oh my goodness, your LCQ champion, Paragon Joe Crush.
6: Congratulations to Joe Crush on another awesome victory.
0: The crowd cheers as Joe's victory cements his rapid rise, while Arslan watches closely.
7: I don't know if it was like destined to, you know, like I just was winning. Like yesterday we played a practice tournament against Arslan. My first hard match was against Arslan and I, you know, won that. So I was like, wait, what's going on here? You know what I'm saying? Like, so, it's just, it feels crazy. Something's in the air, you know?
8: We thank you guys for staying up with us, watching from wherever in the world you're watching from. But we'll see you guys in the morning. Look forward to the violence and the chaos that is going to go down in these group stages. And we'll catch you guys tomorrow. Everybody be easy.
9: Yeah, Joe Crush qualified today. LCQ was in that. टेंशन नहीं है मुझे लेकिन उस वो यंग प्लेयर है और काफ़ी अच्छा खेलता है उसने हराया था लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे पूल में वो आया तो मैं उसे हरा सकता हूँ लेकिन फिर भी थ्रेट तो है वो और मैं चाहूँगा कि मेरे पूल में वो ना आए क्योंकि मैंने बाकी सबके खिलाफ तो तैयारी की हुई है बहुत अच्छी तो देखते हैं बट कंग्रेचुलेशन टू जो क्रिश फॉर क्वालिफाइंग
0: Arslan Ash was always a risk taker, constantly searching for new challenges. He dared to dream beyond his city's borders. While others saw gaming as a dead end, Arslan saw it as a way to greatness. Even when no one believed in him, he believed in himself.
9: मुझे याद है एक दफा फिर ना मैं इमरान बैठे गेमो सेंटर के बाहर तो मैं इमरान से कह रहा हूँ कि यार इमरान मुझे लगता है कि ना मैं यहाँ के लिए बनाई नहीं हूँ मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बनाई नहीं हूँ यहाँ का लेवल और मेरे लेवल में बहुत फ़र्क है मैंने बाहर जाना है और मैं ना बाहर जाऊंगा और मैं जीतूंगा
10: पर तब हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे होते कि कोई अपनी टिकट खरीद के दुबई भी चला जाए
11: तो मैं इसकी बात पे यकीन नहीं किया लेकिन मैंने कहा शायद इसने अहम ही बात कर दी है लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके पास तो पैसे नहीं है ये कैसे जाएगा
0: He knew greatness wasn't defined by where you start. It's about how far you're willing to go.
9: हम जिस सेंटर में खेला करते थे उस सेंटर वाले आदमी से मैंने कहा कि ना मेरे पास तो पैसे नहीं है मैंने बाहर जाना है और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो भी आता है मैं हराता हूँ मैं जीतता हूँ तुम मेरे पे पैसा लगाओ कहता मेरे पास तो पैसा नहीं है मैं कुछ करूँ कहा चलो मैं तुम्हारा पासवर्ड बना देता हूँ तो 5,000 रुपया उसने लगाया मेरा पासवर्ड बनवाया मैं उसके साथ ही गया उसने पासवर्ड बनवा के दिया फिर एक बंदा था दानी भाई उससे मैंने कहा कि दानी भाई जीतेंगे तो आधे पैसे आपके आधे पैसे मेरे मुझे बाहर भेजो जैसे करके कहता कि 20,000 की स्टिक मंगवा के दी आर्केड स्टिक जिससे आप बाहर प्रोफेशनली खेल सकते हो तो पाकिस्तान में वाहिद बंदा था पहला वाहिद बंदा था जिसके पास स्टिक थी
0: It wasn't just a joystick. It was Arslan's magic wand, through which he cast his gaming skills for the world to see.
9: टिकट मेरी दानी भाई नहीं कराई थी खर्चा वगैरह घर वालों ने दिया मुझे तो पहला टूर्नामेंट मैं गया ओमान में खेल पहली दफ़ा ट्रैवल करा था जहाज में बैठा, काफ़ी घबराया भी जब बोल रहा नीचे आ रहा है पहले पहले दफ़ा। और ओमान में फिर मैं रुका, जो दानी बे के दोस्त थे कुछ, जहाँ पे आप देखा होगा बाहर जाते हो फैक्ट्री के लोग बैठे होते हैं, उन्होंने हॉस्टल बुक किया होता कमरा, वहाँ पे बैठे होते हैं साइडों पे, वहाँ पे मैं ठहरा, टूर्नामेंट खेलने गया, वहाँ पे मैं जीत गया।
0: Arslan's first win came easily. The competition in Oman wasn't tough, and the prize was only a modest gaming console. But within that small victory, Arslan saw something much bigger. FVC Major 2018 in Malaysia, a tournament where he'd face legendary Korean and Japanese players he'd only admired from afar. This wasn't just an opportunity, it was his moment to prove he could compete with the world's best.
9: मैं टूर्नामेंट पे गया, पहली दफ़ा कोरियंस को देखा, जापानीज़ को देखा, उल्सान को देखा, सबको मैं हरा रहा था। तो वहाँ पे जिंडिंग कोरियन टॉप प्लेयर है, वो आया, मैं इससे कहा, मैं कहा मैं खेलो FT ना, FT खेला तो उल्टे सीधे करैक्टर ले रहा, मतलब इन्जॉय कर रहा है कि हारा जीत रहा कोई मसला नहीं है।
0: In Tekken, FT stands for first to 10, meaning the winner is the first to win 10 rounds to claim the match.
9: मैंने किसी को कहा यार ये लोग सीरियस नहीं खेलते, कहते नहीं टूर्नामेंट में सीरियस खेलते, मैं कहा पता नहीं टूर्नामेंट में मिलता कि नहीं मिलता ये मुझे, मैंने इसको हराना है सीरियस करेक्टर लेके। तो उसने आईडी लिया, आईडी का प्लेयर था, उससे मैंने बहुत बुरा मारा, वो लोग परेशान हो गए कि जंडिंग ने आईडी लेके हार गया, कहते वे आर यू फ्रॉम, मैं कहा पाकिस्तान, तो मैं पे गूगल पर सर्च करना पड़ा पाकिस्तान है कहाँ पे, मतलब सुना है पाकिस्तान में भी गेम खेलते हैं।
0: फॉर द फर्स्ट टाइम द टेकन वर्ल्ड हर्ड द नेम पाकिस्तान, and it was Arslan Ash who made it happen.
9: Hello, haan bas uthi hu main, taiyari full hai aur dua karna, mama se bhi kehna ke dua kare.
12: First and foremost, one of the greats, one of the goats, one of the best to ever do it. Please make some noise for Nee.
13: Boom! Group B is filled. Anakin, Rafe, Kokoma, and Al to fill.
12: Make some noise for Arslan Ash. The choices have been made, the groups have been filled, and you guys are about to see some good ass Tekken. And I know it's early, but make some noise!
0: Arslan Ash, ever the strategist, picked his pool wisely. No Nee or Atif Butt to face early on. The tension in the venue is intense as the round robin unfolds. Crowd's energy builds with each match. And Arslan knows his moment is approaching. But how did a young boy from Lahore learn to handle such pressure? To find that answer, we must turn back time. Malaysia, 2018.
9: अब मेरा मैच है, मैंने कहा इसको तो मैं हरा लूँगा, मैं स्टेज पे हूँ, उल्सान वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, वो पी एल डी पे, मैं पी एल

0: उसको मैं जीतने नहीं दे रहा, बहुत ही मैं नर्वस था। उसने सेम गेम की, कोई प्लान चेंज नहीं था, लेकिन मैं हार गया। तो फिर मुझे पता लगा कि यार इंटरनेशनल स्टेज पर खेलना और किसी कोरियन या प्रो के खिलाफ खेलना, ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। फिर मेरा मैच आ गया नोबी से, और नोबी के साथ भी सेम चीज़ हुआ। और फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं उससे भी हार गया ना, इस तरह बहुत लास्ट राउंड पे, लास्ट पॉइंट पे हार, तो मुझे पता लगा कि यार स्टेज की गेम और स्टेज का प्रेशर हैंडल करना और अपने आप को कंट्रोल करना, नर्व्स को कंट्रोल करना भी ये अलग गेम है। डजंट मैटर कि जितनी मर्ज़ी आप प्रैक्टिस करो, जितने मर्ज़ी आप अच्छे हो, जब तक आप स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, यू आर नथिंग।
1: Arslan Ash, known for learning from his mistakes, has overcome early challenges. Yet, the heat is on in New Orleans as Olsen dominates Group A, securing a top 8 spot in the finals. With Group B matches about to begin, all eyes turn to Arslan Ash to deliver. Arslan feels the weight of expectations. Every win counts, but the road ahead is long and tough.
2: Look at this Group B, man. We have the four-time EVO champion, Arslan Ash, in this group.
3: We have to our next match, which is going to be a run back for the ages,
2: oh
3: MYK.
2: My goodness.
3: We gotta see, you know, if Al is gonna sit down and play against Arslan Ash, who's the player that he's worried about?
2: Let's find out.
4: So, 日本の予選でも一番そのトーナメントで意識してるプレイヤー、確実にやはり上位に上がってくるプレイヤーだったんで。
1: The bright lights shine down, and the crowd buzzes with excitement.
3: Pakistan, you already know, started playing with Tekken 6. Best memory of Tekken 7, coming a double EVO champion. Best result in TWT 2023.
1: It was a high-stakes mirror match between Ao and Arslan Ash, both using Zafina and Kunimitsu, a character Arslan had owned into his secret weapon and good luck charm. Known for his mastery of female characters, choosing Kunimitsu seemed inevitable.
2: Favorite stuff from Tekken 7.
3: Ninja battle. At EVO, it just felt like, again, just momentum control completely in Arslan Ash's favor. A lot of really, really just compact play too.
2: Oh my goodness. Wow.
1: The pressure was building, and Arslan could feel it in every breath. But with a final blow, he claimed a victory in the first match. The crowd erupted, but beneath the cheers, this moment carried a deeper meaning.
3: Arslan Ash, for so many players on this tour, especially so many of the qualified...
1: In a male-dominated society like Pakistan, where heroes are often men, Arslan Ash broke the mold.
5: अपने वक्त में बड़ा फेमस हो गया था कि वो लड़कियों से खेलता है और उसका इवन लड़कों ने नाम रख दिया था कि अरसलान बच्चियों वाला
6: लफ्ज इस्तेमाल होता था बच्चियों वाला तो ये जो फीमेल्स करेक्टर खेलते थे ना, मेल्स नहीं खेलते थे, ये उनके लिए इस्तेमाल होता था।
0: वो एक अजीब मेंटालिटी लोगों की थी, तुम वो लोग बिस्ती फील करते थे कि आप हम लड़कियों से हारे हैं।
7: माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबको अल्फा बनने की पड़ी रहती है, तो यू नो अल्फा बॉयज़ हमेशा से मेल कैरेक्टर से खेलते हैं, ठीक है, तो वो ठीक है ना, बॉयज़ को सूट भी करता है।
0: और जो लड़कियों से खेलता था उस पर भी वो कहते थे तो बच्चे ना खेलने हैं, मतलब समझ आ रही है आपको कि एक शेम होती थी क्योंकि, और क्योंकि लोग उनसे खेलते नहीं थे लड़कियों से, तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती थी उनके खिलाफ। मतलब एक चीज़ आप करोगे ही नहीं तो उसके खिलाफ प्रैक्टिस किस तरह करोगे आप। तो ये वजह थी कि मैंने उनसे खेलता गया और फिर मैं पाकिस्तान में जीता भी उससे, जूलिया से, फिर नीना से, लीली से,
5: क्योंकि उसको पता था कि लड़कियाँ इस गेम के अंदर बहुत तेज हैं लड़कों की नस्बत।
8: फिर उनके पास प्लस फ्रेम ज़्यादा होते हैं, उनके पास डैमेज ज़्यादा होता है, यानी कि उनको टेकन में मेल की नस्बत जो है ना एडवांटेज ज़्यादा होता है, वो इसलिए इनसे खेलता है।
9: आई फील दैट दैट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट इन हाउ ही perceives not just himself but you know the sort of environment that he was brought around. His mother was really back there to support him and he really reveres that sort of empowerment that came from her.
10: Haan Zafina ka maine bataya tha, maine kaha is character se khelo to wo jaise wo jump karti na ghoomti hai to wo bada acha mujhe laga na, dekh rahi thi main isko khelte hue, main kaha nahi ab ye naya character aaya hai to isse khelo.
11: Zafina ka maine pucha tha aap kyun khelte hain uske sath, तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मा ने कहा था ये आप इसके साथ खेलो, ज़फीना के साथ।
9: I don't think that you know like you could probably ever come up with a character that's female and Arslan would not gravitate towards.
12: They say it's girls game, not it's all skill. Arslan breaking rules, so it's real.
2: Arslan Ash, you know, ever since he picked the

0: Zafina, and then he moved over to Kunimitsu. He really started like mastering the character, finding the intricacy. And the Kokoma, he kind of just plays whoever's cheap, right? So let's find out what Kokoma feels about his performance in the CWT so far.
1: 좀 긴장은 솔직히 많이 되는 것 같아요. 왜냐면 마지막 찰콘 세븐의 이제 무대이기도 하고 당연하게 이제 이 자리에 밟았으니까 어떻게든 뭐 살아남을 수 있을까라는 걱정도 되고.
0: Zafina from Arslan and Fang from
2: Arslan, now fully confident, dismantled Kakuma's defenses with precision, pushing himself closer to his ultimate goal. The crowd roared as Arslan won the match.
3: So far undefeated in group stage play.
2: He shook off the pressure, his belief growing stronger with each step forward. In this final showdown, Arslan Ash isn't just chasing victory. He's determined to take the top spot, and he won't settle for less.
4: I think my zen mein baat dal di gayi thi meri ammi ne, is mein kahunga ki first aana hamesha na mujhe raat ko padhai bhi karti thi kafi zyada ki first position lekar aani hai to wo mujhe badi trigger ki matlab jab chota hota hai bachcha uske aap zen mein jo bhi cheez dal dete to wo is tarah se sochna padta to meri jo mentality thi thinking thi bhai pehle to bata bhi tha ki first aana hota kya hai first second third matlab aake hoga kya to wo mere jo andar thinking thi na ye wali तो वो डेवलप होना शुरू हो गया कि फर्स्ट आना है हमेशा स्कूल के अंदर तो मैं स्कूल में फर्स्ट आना शुरू कर दिया पहले मैं सेकंड आता एक दफ़ा सेकंड आया था तो मम्मी को पसंद नहीं आया शायद कहती नहीं एक दफ़ा फर्स्ट आना क्योंकि खुद भी अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आया करती थी तो वो भी क्या करती थी कि तुमने भी फर्स्ट आना
5: बस पेपर होने ना जब हमारी क्लास में तो खुशी होती थी कि मैडम ने कहा नाम लेना लीजा तो बड़ी खुशी होती थी कि कड़ा कर देना कि ये फर्स्ट आई है तो इसी तरह था कि बच्चे भी सार कामयाब हो तो माँ बाप तो खुशी होती है
4: तो इस तरह ही गेम में मुझे फिर फाइटिंग गेम में काफ़ी इंटरेस्ट आया क्योंकि उसमें फ़ाइट कर रहे हो इसमें जीत हो रही है किसी कोई हार रहा है तो वो चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि यार जीतना है क्योंकि अगले को हराने का भी मज़ा आता था
2: Arslan Ash remains unstoppable in round robin. His momentum is undeniable. There's no turning back. His next big challenge loomed, Anakin from the USA.
0: Anakin representing Atlanta, Georgia.
2: Backed by the roaring support of the home crowd. Anakin fought bravely.
0: Today in this group stage to even give Arslan a loss.
2: But Arslan stayed calm, his focus unshaken. With sharp precision, Arslan broke through Anakin's defenses and claimed victory.
6: All victories in group stage for Arslan.
2: This win not only secured his top spot in the group, but also marked a historic moment. Arslan finishes the group stage on top.
6: As you know, he came into this event knowing that this is his last chance for Tekken 7 to be able to put a stamp on this event in particular. It's eluded him in the past, and he showed you he is ready.
2: An achievement he had never reached before in this TWT Finals history. As Arslan Ash advances into the top 8 from the winner's side, one question lingers in his mind. Will his ultimate rival Ni make it too? The fierce rivalry that began at the 2018 OUG tournament in Dubai is now reaching its peak in New Orleans.
4: I think आपको अपनी जर्नी में एक ऐसा rival मिलता है जिसको आप हराना चाहते हो हर सूरत में और आपके लिए काफी in a way काफी helpful रहता है तक मंजिल तक पहुंचने में.
2: But defeating the very hero who inspired you is never easy.
4: 2018 दिसंबर में OUG की बात है टूर्नामेंट का नाम OUG तो मैं स्टेज पे हूँ अनाउंस हुआ नी एवर्सिडर अरसलान ऐश आ जाए तो मैं स्टेज पे गया तो सेम सीन हो लपड़ा मेरी टांगे रुके ही ना मैं ऐसे रुकूँ मेरी टांग ऐसे हो जाए मैं मतलब इस तरह मतलब लिटरली इस तरह शेक करी थी कि मैं खुद नहीं बता सकता बहुत तेज़ी से बहुत ही अजीब फीलिंग थी वो वाली.
2: After struggling under pressure against Olsen and Nobi in Malaysia 2018, the thought of facing Ni seemed unrealistic. If he couldn't handle lesser-known pros, how could he take on the best? desperate for one last chance. He pleaded with his first ever sponsor, V-Slash, who was now on the verge of pulling out, just to get a ticket, relying solely on promises and prayers. But how could he possibly defeat the greatest of all time?
4: पर मैंने ना हिम्मत इकट्ठी की कि नर्वस नहीं होना जो भी है हार जाऊंगा लेकिन मैं नर्वस नहीं होना तो मैं बाहर गया और मैं जाके ना काइंड ऑफ मेडिटेशन कह लो या कुछ भी कह लो मैं आंखें बंद करके इस पर लाइक कि मैंने बस जो भी सोच रहा था कि अपनी ना एनर्जी कलेक्ट कर रहा था कि जितनी मैंने गेम आज तक खेली है जिंदगी के अंदर वो मैंने और अम्मी का भी सोच रहा था बहुत ज़्यादा कि वो प्रेशर था तब प्रेशर था मेरे पे बहुत ज़्यादा कि मैंने वो प्रेशर और जो सी ए की जो फीस और सब कुछ मेरे जहन में आ रहा था कि मैंने उस सब चीज़ों को ना आज बदलना है मैंने उनको पे बैक करना है जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं दानी भाई जिसने भी जिसने वीज़ा में मदद की जिसने किसी भी तरह की मदद की मेरे और मैंने अपना नाम बनाना आज मेरे पास इसके बाद शायद मौका आए ना
2: But Arsalan defied fate. Against all odds, he stepped up and conquered the greatest. The underdog had risen. The impossible was now his reality. In the grand finals, Arsalan achieved the impossible, a fairy tale ending to an unimaginable journey.
7: 그 전에는 이제 좀 본 적이 없던 스타일이었어요. 왜냐면 공격과 방어의 밸런스가 너무 좋았기 때문에.
2: In one night, everything changed. The quiet underdog from Pakistan dethroned the undisputed king, catapulting himself into the spotlight.
4: ट्विटर खोला कोई 1000 फॉलोअर्स हो गए बड़ी जा रहे हैं बड़ी जा रहे हैं बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक प्लेयर आया है पाकिस्तान का भी कोई नाम है यूट्यूब पे लोग मुझे कर रहे हैं पहली दफ़ा मैं यूट्यूब पे वीडियोस आने लग पड़ी और मुझे पता नहीं फेमस फेमस लोग मार्कमैन जो अब ईवो पे जिनका वो जो है डायरेक्टर सारी कि किस नी को हराया है पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया पाकिस्तान से तो वो चीज़ को एडजस्ट करते करते 3-4 दिन लग गए मुझे फिर पाकिस्तान आया लोगों ने बड़ी वाह की कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया ये वो तो अब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा तो मैं नहीं को हराया फिर इमरान की मुझे कॉल आई मुझे अभी भी याद है मैं एयरपोर्ट पे था तो कहता है अरसलान तुम्हें याद है तुमने बात की थी पहले कि तुम हरा सकते हो नहीं को और मैंने कहा हाँ मैंने कहा था कहता भाई फिर तुमने आज ना पूरा किया और मैं उस वक्त वाकई रोया था उसकी बात सुन के कि हाँ मैंने एकदम मैं ख्वाब देखा था एक कि मैं बाहर जाऊँगा और तुम्हें भी यकीन नहीं किया था मेरे में
2: Now, with the stage set for the ultimate showdown, this is more than just a rivalry. It's destiny. Arsalan Ash isn't only chasing a win, he's chasing a dream only he dared to believe in.
8: Look at this. This is the original Tekken 4 PlayStation. And Harada just signed it, one. And two, this is like the OG cases, bro. They're trying to get rid of physical media. So the fact that you have this, yeah. Is actually, this is like an instant collector's piece now.
9: What about your tension?
10: Pressure, tension. Now, whatever happens, it'll be good. But cool.
2: As excitement and nerves soar, Arsalan waits to see who will move forward from Group C and D.
11: Is the next one.
12: But before we get there, we got a chance to talk to Atif about how he felt about his Tekken World Tour performance. Let's take a listen.
13: इस साल में जो काफ़ी ज़्यादा जो टूर्नामेंट खेल चुका हूँ मैं पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में खेल चुका हूँ तो मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और
2: जो क्रश पुश्ड रेनिंग चैंपियन आतिफ बट टू द ब्रिंक Atif barely escaped defeat, keeping fans on edge. For the first time in a long time, Atif looked vulnerable. Against all odds, Atif Bhatt the reigning champion, failed to secure his place in the top eight. Atif Butt narrowly escapes defeat against Joe Crush. Atif Butt's loss to Lo Hai shocked the arena, but the real drama unfolded in a nail-biting tiebreaker. A match that would decide his future in the tournament. The atmosphere was tense, every move critical. Yet, in an unexpected twist, the strong contender fell short. Against all odds, Atif Butt failed to secure his place in the top eight.
4: To be very honest, I was happy. I didn't say that I was just sad. A
11: pure gamer can never be a friend of anyone. In the game, he will compete with him.
4: Because he was the only player who could beat me. If he was top eight in the grand final, I was happy. And as a friend, I was sad. So the feeling was mixed if I talk about it.
2: Meanwhile, Arsalan's fierce rival Nee made it to the top eight. Though from the loser's bracket. Adding even more tension to their heated rivalry.
14: Looked like he's gonna be in there for tomorrow.
4: And Nee loser mein tha to isse achhi baat ho hi kya sakti hai. Woh to haar jata to mere taraf se main to dua hi kar raha tha ki Nee haar jaye. Aur main to chahta sab bhi haar jaye. Ab main jeet jao.
2: Many dismissed Arsalan's early wins as luck, but he took their doubt as a challenge.
4: Kisi ne mere zehen mein baat dali thi ki tum Nee ko jitna marzi hara lo jab tak usse tum big stage pe nahi haraoge. Main kaha big stage kya hai? Kya hai big stage? Kisi tournament ke grand final mein, specifically Evo ke grand final mein tum usse haraoge tab tumhe log kahenge tum sabse strong player ho duniya ke andar.
2: For a Pakistani like Arsalan Ash, the biggest fight often happens off stage. Getting a visa. After endless struggles and near misses, he arrived in Japan just in time for his match. He fought through the loser's bracket, taking down top players. In the grand finals, he defeated Filipino Tekken legend AK, resetting the bracket and claiming victory. A win that shocked the world. One question remained. Could he prove the world wrong by defeating Nee? At EVO USA, Arsalan answered that question with unmatched skill. Defeating Nee to claim an unprecedented double victory. In a single year, he rewrote history, establishing himself as the undisputed king of Tekken.
4: Defeating Nee, of statement wo maine wahan pe apne liye create ki ke now I am the best in the world. Winning two Evos in a year, abhi tak kisi ne kiya nahi tha life mein.
2: His dominance silenced skeptics who had called his earlier successes a fluke.
15: People were still saying it was a fluke for some reason, but after the second time, maybe third time, I was just like, okay, this is a bit. Watch out for this guy.
16: So people calling it a fluke, that's just them not getting what they want from it. But me, I love to see how it develops and change up. So was it a fluke? I don't think so.
17: At first, I could see why people say maybe it's a fluke, because everyone loses. And you know, it was his first time being on the scene. So everyone expected, of course, Nee to win. But you know, once he's done it consistently, and not even just beating Nee, beating everyone else, it's like, it's not a fluke, and he's just really good. So that's just what it is.
4: बहुत tweets थीं. I don't know how much tweet, लेकिन मैं trend कर रहा था उस वक्त पूरे USA के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी. पाकिस्तान में कोई third number पे, USA के अंदर पहले number पे मैं trend कर रहा था उस वक्त. USA is massive. तो वहाँ पे trend करना is a huge thing. और Evo की वजह से I was trending in USA. I was getting a lot of followers. और लोग दुनिया के जहाँ से भी हैं tweets कर रहे हैं. फैला रहे हैं इस चीज़ को जितना फैला सकते हैं. अब मैं ट्विटर से थोड़ा फेमिलियर होने पड़ा था तब तक. और फिर मैंने सजदा किया. वो ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया था.
18: Paying respect. I love what I'm seeing there. Beautiful.
4: और वो वाली चीज़ बहुत वायरल गई. उस चीज़ों को लोगों ने बहुत पसंद किया. फिर लोगों ने सर्च करने लग पड़े, पाकिस्तान के बारे में सर्च होने लग पड़ी, इस्लाम के बारे में सर्च होने लग पड़ी, सजदा क्यों किया गया, अरसलान के बारे में सर्च होने लग पड़ी, स्टोरीज लिखी गई, आर्टिकल्स लगने लग पड़े, काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने कवर करना शुरू कर दिया. फैमिली तो बहुत ही हैप्पी थी, मम्मा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी. जब मुझे मेरी चीज़ बहुत हैप्पी कर रही थी उस वक्त, ही मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हैं कि मैं जीता हूँ, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है. और सबसे अच्छी चीज़ तो इमोशनल भी है, काफ़ी इमोशनल है कि अभी हमने अपनी सिस्टर की शादी करनी थी. और इवन के मम्मा का जब इंटरव्यू करोगे वो भी आपको कहेंगी कि
5: ये जापान जब पहली दफ़ा जीता ना बड़ा टूर्नामेंट, तो उस वक्त वाकई हमें पैसों की भी ज़रूरत थी, बेटी की शादी भी थी तो ज़रूरत भी थी हमें. तो उस वक्त वाकई इतना इमोशनल हो गए थे कि हम रोने लगे. ये जब जीता है ना, सिर्फ मैं है एक दो पॉइंट से था कि ये जीत जाए, बस एक पॉइंट रह गया था कि या वो जीता या ये वो जीते. तो माशाल्लाह दुआ भी की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको कामयाब, यही वसीला है हमारा कि अल्लाह ताला इसको बना दे.
4: हमारे पास पैसे भी नहीं थे, और मैं जो 2 लाख जहाँ 2 लाख से सोलह शादी होती है और लग भी चुका था 2 लाख. तो पैसे उसके बाद बहुत आम सी चीज़ें थी अंबर के पास, मतलब आम से ज्वेलरी, आम सा पर्स, आम से कपड़े, सारा कुछ आम सा. तो अब शादी किस तरह करना है, तो शादी के लिए उधार लेना पड़ना था. तो उधार दे कोई नहीं रहा था खानदान में.
5: तो बाहर कितने लोगों से पैसे मांगने के हमें मिले, लेकिन फिर मैंने कहा अल्लाह ताला ये जा रहा है ना, तो इसको हमारा वसीला बना दो.
4: लोग जिनसे उधार लेने जा रहे थे कि कैसे उतारेंगे मामा उधार, बेटा भी कुछ नहीं करता इनका और हम उधार दे दे तो फंस जाएंगे, तो कोई उधार देने को तैयार नहीं था.
5: तब ये जीते जाओ तो बस रोने लग गए थे कि खुशी से कि अल्लाह बेशक तो करीब हो के सुनता. अल्लाह कहते हैं तुम इशारा से करीब हो, तो वाकई उस तरह सुना. फिर हम रोने लग गए, तो जाके मैं सजदे में गिर गई थी कि अल्लाह ने इतना करीब हो किसे. वो मेरा मुझसे पहली दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस वाकई अल्लाह ने सुना था.
4: और यही चीज़ काफ़ी अच्छी हुई मेरे लिए और मम्मा के लिए और अंबर के लिए कि मैं कर सका, मैं जरिया बन सका अपनी बहन की शादी करने का.
2: Arslan Ash's journey is a story of heart, determination, and unstoppable willpower. From humble beginnings, he rose to become the undefeated champion of Tekken, breaking every limit. But now, the weight of the world rests on his shoulders. He's just one title away from securing his legacy as the greatest Tekken 7 player of all time, if he wins the TWT Finals.
18: Arslan, big day. What are your thoughts?
19: बस प्रेशर में रहने की कोशिश नहीं कर रहा ना, नॉर्मल जितना रह सके उतना वो है कि उस तरह का अच्छी गेम बाकी जो रहा लोग मंजिल हाँ मैं रेडी. हाँ मैं खुद तो रेडी हूँ. नींद पूरी आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है कि आपकी नींद पूरी है, तो वो तो पूरी है.
20: कल परफॉर्म तो अच्छा किया, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया. अभी आज का मैं लोहा इससे वो काफ़ी अच्छा खेल रहा, तो वो है. उसके बाद उनसा सारे कोरियन ही आए हैं, 6 तो कोरियन है, एक जापानीज है, उसके एक पाकिस्तानी. देखते हैं क्या होता है.
18: पाकिस्तानी बाप ही हो खाली इस बार,
20: हमेशा ऐसे होता है एक पाकिस्तानी होता है लेकिन वो जीत जाता
4: है. एक रात पहले मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि नी ने मुझे एक दफ़ा एडवाइस की थी. मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है प्लेयर से खेलने से पहले. वो कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि मैं प्लेयर की गेम वॉच नहीं करता, उनका स्टाइल नहीं देखता, मैं बस करेक्टर को देखता हूँ उनके. मैंने पूछा ऐसा क्यों है, कहता है क्योंकि जब लोग गेम इन रियल टाइम अपनी गेम चेंज कर लेते हैं तो आप सोच के कुछ हो जाते, होता कुछ हो रहा है. तो मुझे नी की बात काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैंने लैब नहीं करना, प्लेयर्स को देखना नहीं है, मैं करैक्टर्स को लैब कर लूँगा. अगले दिन मेरा मैच हो रहा है लोहाई से, लोहाई के करैक्टर्स देख लेता हूँ, उनके करैक्टर्स के मूव्स रिमाइंड कर लेता हूँ हर चीज़. लेकिन हाँ मैं स्पेसिफिकली लोहाई को स्टडी नहीं करूँगा, शाह होता है उन्हें गेम प्ले ही चेंज कर ले सारी की सारी.
18: भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है,
21: ये हैंड वॉल. आप ठंडे हाथों से गेम नहीं खेल सकते, लाइक अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप कम्फर्टेबली रहते हो, आपसे दुबते नहीं है बेटा. तो हाथ का वार्म होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मौती गांधी भी बोलता मैं बोलूँगा. Hi, this is Arslan Ash. I want to say thanks to Tekken 7. This game gave me everything, respect, money, fame. It means a lot to me.

0: me, and I just want to say thanks again. I'm here because of Pickensa.
1: To be honest, I want Arsene to take it. But Lohi has also been playing out of his mind. So it's between them two. And they're playing in the second match. So I don't know, man. I don't know.
2: The crowd buzzes with electric energy as Arsalan Ash faces Lohi in a high-stakes battle. The tension is thick, and every move matters.
3: One of these two players will meet him there later on today, but which one will it be? Deal with this? Come from behind?
4: Oh, that is game number one for Lohi.
2: Lohi takes the first round, leaving everyone on the edge of their seats.
5: बहुत टफ चला गया था लोहाई वाला मैच पूरा का पूरा टॉप 80 इतना टफ था पर लोहाई का मैच पहला राउंड वो जीत गया तो आतिफ ने मुझे कहा था कि तुम ये ना दो नॉकटिस मैं नॉकटिस खेल रहा था और मैंने खुद भी कहा था मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ना लूँ मैं कुनी मिर्च से ले लेता हूँ क्योंकि मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा तो आतिफ वाज लाइक हाँ तुम उसके साथ खेलो कुनी मिर्च और उसकी गलतियाँ देखो
2: In the second round, Arsalan counters with precise attacks, breaking Lohi's defense. The crowd erupts as he claims the round.
6: Arsalan looked good in that last game, and knee comes up on
3: oh
6: the stage.
3: Oh my God!
6: Oh, I almost spit my water out, bro. You can't.
2: Knee, coaching Lohi from the sidelines, knows that defeating Arsalan will clear his own path to the throne.
6: I did not. Oh my God, this is crazy, bro. Do y'all not understand? This is crazy.
2: Arsalan lands a perfect combo, sealing the victory in a thrilling finish. The tension isn't just in the arena, it pulses through Lahore, where every move grips the hearts of fans.
5: नहीं ज़फीना का काफ़ी लोगों को पता लग गया लेकिन मैं नॉकटिस
7: पता है इतना वीक भी हो गई है ज़फीना
5: हाँ नर्क भी होता पता है आपको तो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाकी आपको कहाँ साथ है और देखते हैं आप
7: मानो
5: भी वैसे तो जीत तो मानो ने जिताना है मानो मानो आपने जिताना ठीक यही जिताएगी मेटे का
2: Women have always played key roles in Arsalan's life, from his mother to the iconic female Tekken characters. Now, Arsalan welcomes two more important women, his wife and newborn daughter. Could they be his lucky charm?
5: Yes, I believe completely because I won the wedding after marriage. And before the wedding, I got a lot of strange things to listen to, which I completely believe in. I think the world is a world, so you should listen to every person's story. Some people believe that शादी के बाद में हम उस तरह से नहीं खेल पाएंगे इवन एक करेक्टर है गायल तो वो जब जीतता ना वो बोलता है कि तुम जाओ और शादी कर लो मतलब गो एंड हैव बेबीज इस तरह करके बोलता है जब शादी कर ली जिम्मेदारियां आ गई बेबी आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते अब आप गए अब शादी वाले अब पेरेंट बन चुके हो घर बैठो आप बच्चे पालो जाके अब तुम तो चैम्पियन तो कहीं कभी नहीं बनने वाले लेकिन आप अभी देखें रिसेंट वर्ल्ड के अंदर आप लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं मेसी रोनाल्डो उनके बच्चे हैं लेकिन स्टिल दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड तो ऐसा कुछ नहीं है ये स्टिग्मा है बिल्कुल कि ऐसा अगर हो गया शादी हो गई तो आप जीत नहीं सकते लेकिन मैं शादी के बाद दो चैम्पियनशिप भी वो फिर जीता और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी और बेटी रहमत होती है तो मेरी बेटी काफ़ी मुबारक रहेगी
2: Arsalan Ash challenges outdated beliefs. While the drama escalates as Nee enters the harsh losers bracket to face Rangchu.
3: There you go.
4: But what if you like the legend himself, the Brian player himself? Make some noise if you would like Nee to take the set.
3: All right, here we go. Already blocking. Big one set. Staying alive to fight another round. Is this the shift that he needed? Is this the momentum that he needed?
4: Oh!
3: What's gonna happen?
4: Oh, he blocked it! He just blocked it!